0: जो मैं मैसेज करता हूँ लो जी मैसेज कर दी डॉक्टर साहब का।
1: जनहित विच सूचना, मशहूर होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर गुरदीप सिंह संधु उम्र दे 75वें साल दे विच मेडिकल प्रैक्टिस दे 50 साल पूरे होने ते अमेरिकन इकॉनमी दी सब तो माड़ी हालत होने करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उम्र दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया है तां जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही दे के इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलते रहन, इन्हां दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे ते तुहाडा घट खर्चे च इलाज हुंदा रहे। कॉल करो 408-687-1899।
2: ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, है जब यमला पगला दीवाना हो रब्बा।

मित्रों प्यारे सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम अलैकुम। सारे वीर भैन भरावां नूं बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो प्रोग्राम दी शुरुआत तुहाडे नाल, मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक, प्रवास रेडियो न्यूयॉर्क स्टूडियो तो तुसी प्रोग्राम नूं सुन रहे हो, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी। सो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे जी, अपने कोल एग्जैक्टली टाइम पूरे 7 बज गए ईस्टर्न टाइम न्यूयॉर्क तो, ते इंडिया दे विच एग्जैक्टली जेड़े आ मेरे हिसाब नाल 4:30 मॉर्निंग हो गए। कुछ गीतां दी लड़ी डिफरेंट सिंगरां दे डिफरेंट गीत ओ पेश करदे आ। पहले सब तो कन्वर गरेवाल साहब, ते फिर एक ड्यूल गीत हैगा फिर हंसराज जी ते इंद्रजीत निकू ते कमल हीर। ਇਹ 4-5 ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 7328743259। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਗੀਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ।